जन्म प्राप्त होया, भावे पढ़न आया पे फलां जन्म सी, फिर मुड़ के आ गया, फिर आ गया, उसनों फिर जन्म पै गया, मिल गया, तो उन्हों थोड़ी जी खबर अपने पुराने जन्म दी है, ये बारहों पढ़िया मैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह अटल फरमान असि ते गुरु साहब दे अन्याई है ना, इन्हां फरमान इन्हां दे बचन प्रवचन सतगुरु बचन तुम्हारे अटल ने। ओह कहंदे ने कबीर मानस जन्म दुलंब है होए ना बारे बार, अगे फिर मिसाल है जो मन भर पाके होए गिरे और ना लगे डर। दोबारा यह जन्म प्राप्त नहीं होना, भाव मानस जन्म नहीं मिलना, मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया। एक बंदे दे सिर विच खारिश बहुत है, बहुत तकलीफ है, दोनों हाथों नाल खनूई जांदा है, खनूई जांदा है, कई बार ते खनूंदिया नाखन नूं खून भी लग जाता है, पर परेशान बड़ा है। आम एक खान है कि खंघ और खुरक किन्ना लकोलो ये प्रगट हो ही जाते। किसी सियाने ने बंदे नूं कहा बड़ी तकलीफ विच आ तू, इहदा कोई प्रबंध कर, कहिंदा सुनो वड्डिया ज्ञानिया इहदा तां कोई नहीं, मैं चल लूं, मैनूं इह दस कि अज इस नेर कोठली विच मैं बड़ गया हां, इह तों बाहर किवें निकला, ऐडा महल ते इहदे विच नेर कोठली विच मैं बड़ गया, मेरे कर्मां ने वाड़ दिता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह बारह माह के आरंभ विच कहंदे ने कि इंसान देख तू अपने वल दो कारना करके तू प्रभु नाल विछड़ गया है। वो कहन लगा इंज कर, इस महल की जिस कोठी विच वड़िया है तेरे सज्जे हत्थे दी कंध है, कंध नाल हाथ ला के तुरिया रह, बापू जी भेजदा ना बुलाया करो इत्थे बैठ के खिमा कर, मैं भी खबर सारी मंगदा जी, हां जी तेरे सज्जे हत्थ दीवार है। वो कहंदा मैं नेत्रहीन भी हां, माणक गुरु जी कहंदे ने हम अंधले अंत बिखे बिखराते, असि अन्ने हां, भाव साडा ज्ञानवान कोई नहीं, साडे ज्ञान दे और विरों दे चक्षु नहीं हां, मैनू दस कहंदा ले मैं तेरा हाथ दीवार नाल लवा दिना, ऐ तुरिया रह तुरिया रह तुरिया रह तुरिया रह, जिथे दरवाजा आओ ना उत झट बाहर निकल जाए। पर इहदे माड़े भागां नूं इन हाथ ते ला लिया, पर जिस वेले दीवार दे कोल आउण लगदा छड़े ना उसने खुर करन लग पैंदा, तुरिया तुरिया दरवाजा निकल जांदा, दरवाजा निकल गया, इन दो चार चक्कर मारे दरवाजा निकल गया, बेचारा अंदर तड़फ के मर गया। हुण तरीका यही है भई इस जन्म विच आके सतसंग जी मनुखा जन्म विच आके प्रभु का सिमरन बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत मन तन तरपिए, इथों दी बाहर निकल होना। इसे जन्म ऊट नूं कुछ नहीं पता, शेर नूं कुछ नहीं पता, कुत्ते नूं कुछ नहीं पता। देखो जिन्ने ज्ञानी ने जिन्ने विज्ञानी ने जिन्ने महापुरुष ने जिन्ने संत जन ने जिन्ने महात्मा ने जिन्ने गुरु पीर होए हन सारे यही समझाते हैं। पर एदी हाल आह तां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सासन एक बार अदमन आखो सतनाम शिवाय, हालत उस बंदे वर्गी है जेन मार्केट मुश्ती अनाज की मन बौरा रे। एक बर्तन है ओदा छोटा जिहा गलमा है, हेठों बड़ा लंबा चौड़ा है, बंदर ने देख लिया कि एदे विच खिल्लां पईआं ने दाने पै ने, उन हाथ पा लिया ते हाथ पा के मुठ विच पा ले दाने, हुण मुठ जा बाहर नूं कढदा ओह नहीं निकलदी। मरकत मुश्ती अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छुटर तो सहसा परे, छड़दा नहीं दाने छड़ दे हाथ निकल सकता है, पर दाने पकड़े मुड़ समेत कढ़नी चाहता नहीं निकलता। हुण होया कि गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने नाचो घर घर द्वार मार, वो लैके ना नचता फिरदा घर घर द्वारे द्वार जाता है, छुटर को सहसा परे। इसे जन्म विच आके इस गल का पता लगना सतसंग जी, और इसे जन्म विच ही छुटकारा होना।
आखो सतनाम श्री गुरु। जे असी संभालिया कोई ना फिर ते बहुत मुश्किल हो। निर्गुण यार ध्यान आ सत्संग जी आखो सारे तुहानू याद है।

0: मेरे नेत्र अनुनाचे, मेरी अखां नूं कुछ नहाक कांगा, क्योंकि इन्हां नेत्रां च साईं दे वेखण दी सिक है और सारे शरीर नूं बेचकला है। मैनूं जरा भी परवाह नहीं, जो बन जांदे ना डरा, जे सौ प्रीत ना जाए। ए नेत्र प्यारे दी इंतजार पे कर देन, कद आवेगा। इतना समा बिताया, अजे भी रब नहीं मिलिया। प्यारी साध संगत आखो सतनाम, मायूस होके बाहर फरीद एक दरख्त दे हेठां बैठ गया। दरख्त दे उत्ते पंछी चिड़िया बोल रही। फरीद ने तख्या, पंछी रौला पा रहे हैं, चिड़िया बोल दिया हैं, मेरी बंदगी दे विच खलल पा रही। अंदर गुस्सा आ गया, तलखी आई, तकिया ते क्या चिड़ियो तुसी मर क्यों नहीं जांदी। कहण दी देरी सी, सारियां चिड़िया दरख्त तों डिग पईया ते धरती ते तड़फण लगी। ए तां सचमुच ही मर गई, तड़प रही। दिल च दर्द आ गया, क्योंकि सिमरन करने वाले का जिहड़ा मन हुंदा है वह बड़ा कोमल हुंदा है। दुखिए नूं वेख के दुखी ते सुखिए नूं वेख के मालिक का शुक्र। मन बड़ा नरम हुंदा। फरीद ने ठंडा सा लिया, ओ पापी मन, तू भी पंछी ते ए भी पंछी, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। विचारियां तड़फ रही हैं, दर्द आया, बचन किया, चिड़िया उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां चिड़िया उड़ गई। हैं, मेरे भी तो शक्ति आ गई है, भावें रब ने मिले है, पर रब की शक्ति तो आ गई है ना, मारिया भी जीवाल भी दिता। अंदर हंकार आया, सारी तुर पिया। गर्मी दी मौसम सी, सामने नगर है, पिंड दे बार बार एक खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी पर दी। प्यास लगी, चलो मना पानी पी। फरीद जी खूह दे कोल आए, इस नौजवान लड़की वल तकिया ते क्या, बेटी मैनू डाढ़ी प्यास लगी है, पानी दा घुट पिला। पानी भरन वाली मुटियार ने फरीद वल वेखे, पानी दा डोल खूह विचों कढ़िया ते बाहर डोल दित्ता। हैं, इसने मैनू पानी नहीं पिलाया। फिर फरीद ने कहा, बचड़ा मैनू डाढ़ी प्यास लगी, मैनू पानी दा घुट दे। दूजा डोल कढ़िया, इस बीबी ने यह भी बाहर डोल दिता। फरीद नूं गुस्सा आ गया, केडी गुस्ताख लड़की है, इनू यह पता ही नहीं है कि मैं प्यासा, मेरे लब सुकते जाते हैं। दो मेरी क्या है, पानी तो पिलाना एक पास है, मेरे वल वेखदी नहीं, पानी कढ़ के बाहर डोलदी। गुस्सा आया ते क्या, मैनू पानी क्यों नहीं पिलांदी। तो पानी भरन वाली लड़की जिसका नाम सी माई रंग रतड़ी, तकिया तिरछी निगाह नाल ते किया, ओ फरीद, ए कोई जंगल दियां निखसमियां चिड़ियां नहीं जिन्हां नूं मार के जवाल लवेगा, मैं खसम वाली आखो श्री वाहिगुरु, सारे आखो वाहिगुरु। कोई रचना इस पवित्र पावन नाम तू वांझी ना रह जाए। गुरु दरबारे जुड़े हो, सच का वर्णन कर रहे हो, आओ भाई सच दे व्यापारी हो, प्यार नाल सारे आखो सतनाम। फरीद ने सुने, पानी दी प्यास तो बुझ गई, ए प्यास लगी है जंगल बियाबान च मैं चिड़िया मार के जवा। इंसान ता की उथे हैवान ही कोई नहीं सी, पर तेनू कि पता लग गया। बेटी तेनू किस तरह पता लग गया? इन्हें हस के कहा, मैनू सब पता है, है? मैं इतनी बंदगी कीती है, अजे मेरे अंदर अंतर्यामता नहीं आई, तेरे अंदर किस तरह आ गई? हाथ जोड़ के फरीद ने पूछया। माई रंगरतरी ने कहा, फरीद ये सारी कृपा मेरे पति दी है। पति दी किस तरह? सारी विथ्या दसी। फरीद, माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मैं अपने सहुरे घर चली, अद्धी रात का समा सी, मैं अपने पलंग ते लेटी हुई सी, अचानक ही मेरे कन्ना विच आवाज आई, पानी। आवाज सुनी, तकिया किधरों आई है ये आवाज, वेखिया मेरे सुहाग ने पानी मंगया। सोचे पहला दिन है, अपने बाबल दा देश छड़ के अपने पिया दे घर विच आई, किसी होर ने पानी नहीं पिलाया मेरे पति। उठ लोक लज्जा नूं त्याग के फरीद पानी दा छन्ना भरिया, अपने पति दे पलंग दे कोल पहुंची, पर फरीद मेरा पति फिर सौं गया सी, आंखों सिरी लाए, नींदर आ गई। नींदर बड़ी पर्वत है,
1: नींदर बड़ी पर्वत है, कहने पूरी उठे भी आ जाती, नींद आ गई। सोचिया
0: जे मैं भी जाके सौ जावांगी तो पति प्यासा है, इन्हें पानी मंगया है, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी, जे मैं जाके आराम करदी हां पति प्यासा सुता पिया, जगाऊंगी हां तो बेआरामी। ये सोच के फरीद मैं अपने पति के चरणा वाल पानी का भरिया छन्ना लेके खड़ो गई, जिस वेले उठणगे उस वेले पी लैणगे। काफी समय के बाद मेरे पति ने नेत्र खोले, मेरे वाल तकिया, भागवान तू इत्थे किस तरह? सारी विथ्या दसी, तुसी पानी मंगिया सी, पानी का छन्ना भर के तुहाडे कोल पहुंचे, तुसी सौ चुके सो, सोचिया तुहानू प्यास लगी है, जे जगाऊंगी हां तां बेआरामी है, इस वास्ते इस इंतजार विच पानी का छन्ना भर के खड़ोती हां, मेरे साई जी पानी पीओ। फरीद मेरा पति उठिया, मेरे हथां तू छन्ना लेके पानी वाला उसने अपने मुंह ना लाया। फरीद मैं सच कहती हां, ज्यो ज्यो मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यों त्यों मेरे अंदर रब आउंदा सी।
2: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

करना कबीरा तूर सकेल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए बलन।

बुढ़ा हो से फरीद कमल लगी दे, बुढ़ा हो से फरीद कमल लगी दे, जैसो वरिया।

सदगुरु शिव प्यार क्या थोड़ी बात मा हर जसरे मन गाय ले हर जस रे मन गाय ले जो संगी है तेरो असर बिचो जात है।

मुकाम ता पर जानिए जा रहे ने चलो दुनिया कैसे मुकामे दुनिया कैसे मुकामे

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती बडैली।

एक दे द्वय सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती, नमो जीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो जीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो पान की बान गंगा तरंगी, नमो पान की बान गंगा तरंगी, तेरे साम है मोख दाती अपंगी, फिरे शाम है मोख दा

अस्कृपान खंडो खड़ग, अस्कृपान खंडो खड़ग, तुपक तवर अर्पे, अस्कृपान खंडो खड़ग, तुपक तवर अर्पे, सैप सरोही सैही यही हमारे पीर, सैप सरोही सैही यही हमारे पीर, तीर तू ही साथी तू ही तवर तलवार, तीर तू ही साथी तू ही

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुट धड़कन आगर्दन तीरं तुट धड़कन आगर्दन तीरं तुट धड़कन आगर्दन तीरं

भाई नंदलाल जी, ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त, हमेशा जिंदा अस्त, ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उचार पुलाद पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देख खालसे को पुरक जाएंगे देख खालसे को पुरक जाएंगे
1: एक चले सिंह
0: झूलन नेजे हस्ती साजे झूलन नेजे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नौब दुखे सवा लाख जब धुखे पलीता सवा लाख जब धुखे पलीता तबे खालसा उदे

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू एंड आई हैव ब्रोकन विद ऑल अदर्स। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा। तुम सो ठाकुर और ना देवा। वेर एवर आई गो देयर आई सर्व यू। देयर इज नो अदर लॉर्ड मास्टर देन यू ओ डिवाइन लॉर्ड। तुमरे भजन कटे जम फांसा। भगत हेत गावे रविदासा। मेडिटेटिंग वाइब्रेटिंग अपॉन यू द नूज ऑफ डेथ इज कट अवे। To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syo tor, kavan syo jore. Raag Sorath, taal, choti tin taal, 16 beats.

शोभा का नाही अंत, साथ की शोभा सदा बेअंत, साथ की शोभा बेअंती, साथ की शोभा।

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ऐ जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नूं चलाण तों पहलां वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहलां गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

कमर कटारा भौतड़ा बंके का हसवार गर्व ना कीजे नान का मत सिर आगे करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर दे जवानी रे जवानी सदा नहीं रही आउंदी है चली जाए ये झूठा हुकूमत का माण कर दे इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है माया का माण करना यह भी झूठा माण माया ये तो चलता पानी यह माण भी धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं याद रख एक दिन पछता है साहबां का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर को रख दिती दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणों से फिर रोज लग पातशाह मेरे बख्श लो मैं पापी मेरे कोलो कुल हो गए अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते हैं जे शीशे को जाइए शीशे को ना जाइए तो पता ही नहीं लगता इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हों का पता तो लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो अज धन गुरु नानक पातशाह जी धर्मकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रोज भुब्बा मार के रोई जाता कहता है पातशाह मेरे बख्श अरदास कर आओ आप भी करिए किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ

सामने आके मेरू डराए तो मेरू बख्शन वाला होर कोई नहीं। जिस तरह मैं वड्डा पापी हां तू बख्शन भी वड्डा है।

करो निगा रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुतो पातशाह बस अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद तो हजूर ने अभी दृष्टि तकिया तकिया करोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपेगा नाम जपेगा तेरा मन पवित्र नाले बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनू निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य माया भी सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी प्रवान केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह अदूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्लां विच नहीं गल्लां दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है प्रवाह करना पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आना है फिर जिना संभाल लेना है वह पाए करोड़िए बख्शिश हो ते भी गुरु की बख्शिश बख्शिश वाला समा बख्शिश तो सदी ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज बचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वड्डी आप जिन्हों के भागा बख्शिश दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जिस कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा करोड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई पाई कीर्तन का अमृत से तो यह दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगे मरदानिया रवाज चुके शब्द की अकेली पकड़ मरदानिए ने रवाज चुकया तो बाबे ने सोने गले चो यह शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

सही था सही। जो गुरु का उपदेश सहबा ने करोड़िए से बख्श और असी भी इस उपदेश को निर्देश बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है और लोग सुखे ने संगत जिथे हुस्कन दिया संगत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल जुड़े तो अज गुरु दरबार साहे हुए अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाएंगे उस तो कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रोटीन चल रही है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने उचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

एक कर्म छड़ के तो करोड़ा कर्म कर। भुखिया नू रोटी खुआ, जल चका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।